मन तन पै संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सुबाया कोट अगा गै नास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर जन धूड़ी नाया मन तन पै संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सुबाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सुबाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक दया करणिंग दुख हरणिंग उच्चरणिंग नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपतना माया पाहे बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन अपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लत वार भुखिया भुख ना।

0: बुद्ध मने सगल पवन की सुध
1: मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ न जाए
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
1: मने मार्ग ठाक न पाए मने पथ सिंह प्रगट जाए
0: मने मग न चले पंथ मने धर्म सेती।

0: थके वेद कहन एक बात,
1: 618 कहन कतेबा असल एक तात,
0: लेखा होए त लिखिए लेखे होए बनास,
1: नानक बड़ा आखिए आपे जाने आप,
0: साला ही सला एती

0: अमोल परवान
1: अमोल बखसीस अमोल निशान अमोल करम अमोल फरमान
0: अमोलो मूल आख्या न जाए आख आख रहे लिबलाए
1: आख है वेद पाठ पुराण।

0: झटपट शांत व प्रसाद
1: सर्वहंत सर्वंगंत सर्वं ख्यात सर्वं ज्ञात
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणिं सर्वं त्राणिं
1: सर्वं सर्वं धर्मं सर्वं योग्यता सर्वं मुक्ता
0: रसावल शांत व प्रसाद
1: नमोनक नाशिसदा प्रकाशिनंगं स्वरूपे भंगं भूते
0: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते
1: अंगी नामे तरभंगी तरकामने भंगी स्वरूपे सर्वांगी रूपे
0: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
1: साधन श्री कमितो मिकसदैव प्रभा जय जय
0: भगवती शांत व प्रसाद
1: अर्जुन के हाजिर हुजूर है मैं सुसला मैं समस्तुल कलाम है
0: कि साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
1: जी रहंदा के राज करहंदा करीमल कुमार है कुसनल जमाल है
0: गनी मलख राज है गरीबल निवाज है हरी फल शिकाने है हरासल पिकाने है
1: प्रणाश समस्तुल निवास संगन गनी मर जाय करीम है
0: समस्तल जुबा है के साहिब किरा है के नरकन पर नास है वैसल निवास है
1: सर्व गवर्न में सर्वर्ण तमाम तुम्हें जय समस्तल जी जाए
0: परम परमीश है समस्तल अधीश है अधेशल लेख है अमेशल भेख है
1: जमामी को लिमा करी मुल कुमाल है जुरत जमाल है
0: कि अचलंग प्रकाश है के मितो सबास है के अजब स्वरूप है के मितो बेभूत है
1: मितो बसा के आत्म प्रभा के चलंग नांग के मितो अपांग है
0: मद पार शंत व प्रसाद
1: मन प्रणाम गुण गुण मुदा अमर ब्रंगान झर नर पर पांज
0: अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड वर नर अमंड
1: मन को विनाश मन मन प्रकाश गुण गुण पूर्णा जल थल मुदाम
0: आंचिज अंग आसने अपंग उपमा पार गत मित धार
1: जल थल मन दस वस पण जल थल मन दस वस बेअंत
0: अन पवनास तिरता त्रास आजान बाहो एक सदा हो
1: ओंकार आदि कथनी नाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल
0: कर कर प्रणाम चित चर नाम आंचिज गात आजिज ना बात
1: चंद गात अनंज बात अंतर भंडार ठठ पार
0: आठीत धर्म आतीत कर्म अनबन अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत व प्रसाद
1: काले है हर काले है खल खंडन है मह मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है
1: जगत रण है जाके करण है मन मान है जग जान है
0: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्व पासे है सर्वनाशे है
1: अनादर है संग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
0: ब्रह्मंड से है खल खंड से है परते पर है करना कर है
1: तपा तपा तप कृता कृता अमृता अमृत है
0: अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है धरनी
1: त्रित है परमेश्वर है कृता कृता अमृता अमृत है
0: अजब्बा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खल खायक है
1: संपर है करुणाल नर प्रणायक है सर पायक है
0: पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है
1: सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुचंग प्रयात चंद
1: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीजे बीजे
1: नमो संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान
1: ध्याने नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग
1: लंकर रूपे लंकर लंके नमो आशास नमो बांग बांके
0: अभंगी स्वरूप पे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक छ्री शांत
1: जल पब
0: अबू अजू अनास कास
1: पांज पांज लाख पाखु
0: अकाल दयाल लेख पेख
1: नाम काम गह डाह
0: अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी
1: नरागे नरंगे नरूपे नरेखे
0: अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुचंग पर्यात शंद
1: समस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे गंजल नामे समस्तल निवासी
0: निरकामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सदर्मंग बैपूते
1: सदा सदा मन सतरंग परनासी करे मुल्क निंदा समस्तल निवासी
0: अजाय बैपूते गजाय बगनी में हरियम करियम करीमल रहीम चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुक्ते

0: लोचन मुंद कह बैठ भक्त ध्यान लगायो
1: नाथ फिरियो लिए सात सुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो
0: बखियान सु बैठ कह सी ऐसी सुबह से बतायो
1: साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: पाहन पूछ तर उस कहूं लंगर।

0: ताई हमारा
1: सब जगत बनायो देव दै जछन उपजायो
0: आदंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
1: सिहि को मारी सकल प्रजा जन आप सुवारी
0: शिवगन को शिवगन सुख देयो सतरन को पलमो बद कट
1: के अंतर की जान तो भले बुरे की पीर पछानत
0: चींटी ते कुंजरे स्थूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला
1: दुखी सुख पाए साधन के सुखी
0: की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
1: तर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा
0: जबा करख कर तुम कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब जेते
1: बदन सृट सब तारा पापनी बूझ उचार
0: तुम सब ही ते रहत नराल मुझा

0: तू मन मेरे दुख सब विसारना
1: अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना
0: सम्राट स्वामी सो कह मनो विसारे
1: कहे नानक मन मेरे सदा रोहर नाले
0: साहिबा का नहीं करती रहे
1: करता तेरे सब कुछ है जिससे सो पावे
0: सला तेरी ना मन बसावे
1: नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द करीरे
0: सच्चे साहिब क्या नहीं करती रहे
1: सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
0: प्रशांत सुख मनाए बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया
1: सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए बढ़ियाइया
0: सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारू
1: वाजे पंच शब्द कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
0: दुद वास कीते काल कंटक मारिया
1: दुर करम पाया तुझन को से नाम हर के लागे
0: नानक कह सुख वदत कर अनहद बाजी
1: साची लिवे बिन दे न माणी लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
0: दुद कोई ना कृपा कर बनवारिया
1: केस ना होर थाओ ना ही शब्द लाग
0: सवारिया बाजों क्या करे बेचारिया
1: आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया
0: सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा के लिवे कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: कम तुटा तन का शब्द सच्चा सवारिया
1: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया
0: बाबा जस तू दे सो जन पावे पावे ता सो जन दे जसन होर क्या करे बेचारिया
1: एक परम भूले फिरे दे दिस एक नाम लाग सवारिया
0: प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाना पावे
1: कहे नानक जिसे प्यारे सोई जन पावे
0: संत प्यारे औकात की
1: करे कहानी औकात केरी कित द्वारे पाइये
0: सब सौंकर को हुकम मनिये पाइये
1: हुकम मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी
0: सुनो संतो कथियो औकात कहानी
1: ए मन चंचला चितराई किने ना पाया
0: ना पाए किने तू सुन मन मेरिया
1: ए माया मोणी जिनेत परम पलाया
0: माया मोणी तने कीती जंठ गौली पाइया
1: करवान कीता तिसे बिटो जिन मोह मीठा लाया
0: मन चंचल चतराई किने न पाया
1: ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले
0: कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले
1: साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए
0: ऐसा का मूल ना कीते दंत पछुताइए
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले
0: ए मन प्यारी तू सदा सच संभाले
1: अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया
0: किन तेरा अपना आप तू जान
1: जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने
0: सब तू है जन जग तू पाया
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया
0: मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन बसाया
0: सब तो दो पाए कबीर परसन आया
1: लाभ लो अहंकार चुका सतगुरु पल्ला पाया
0: जिसनो आत उठा तन अमृत गुर ते पाया
1: भगता की चाल निराली चला नराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना
0: लाभ लो अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना
1: खनियो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना
0: गुरु प्रसादी जिनी आप ते जहर वासना समानी
1: कहे नानक चाल भगता जुगो हो जुग नराली
0: दिलाए तब चलो स्वामी और क्या

0: गुरु के चरण हृदय ते आए अंतरात्मा संभाले
1: आप छड सदा रहे परने गुर बिन अवर न जाने
0: होए नाम सुनो संतो सो सुख सन्मुख होए
1: जे को गुरु ते बेमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे
0: मुक्त ना होथे कोई पुछो बवेकियां जाए
1: अनेक जूनी परमावे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए
0: मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए
0: सतगुरु के प्यार गावो सच्ची बाणी
1: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी
0: मगर कर्म हो हृदय तना समाणी
1: पीवो अमृत सदा रो हर रंग जपियो सारंग बाणी
0: सदा गावो सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी
0: कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखानी
1: हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी
0: कहर लाया माया बोलन पैर बाणी
1: कहे नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी
0: शब्द रतन हीरे जत जड़ाओ
1: शब्द रतन जित मन लागा एहो आसमाओ
0: सति मन मिले सच्चा लाया पाओ
1: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बजाए
0: शब्द रतन हीरा जत जड़ाओ
1: सिर सख्त आप पाए के करता आपे हुकम बरताए
0: पाए आवेख गुरमुख सह बजाए
1: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए
0: जिसनु आप करे सो वै कसुंड बुलाए
1: कहे नानक आप करता आपे हुकम बजाए
0: शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी
1: तत्ते सार न जानी गुरु वाजो तत्ते सार न जानी
0: संसार परम सुता सुत्या रहन बिहाड़ी
1: गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी
0: सो तत् पाए स्नवंदन हर लिव लागे जागत रहन बिहाणी
1: माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो वसारिये
0: मनो क्यों वसारिये वरदाता जगन में आहार पहुंचावे
1: उसनु क्यों पोए न सकी जिसनु अपनी ले
0: अपने आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है
1: कहे नानक वरदाता सो क्यों मनो
0: वसारिये तैसी बाहर माया
1: माया गगन सब एको जे ही करते खेल रचाया
0: जमिया परवार भला पाया
1: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया
0: तर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया
1: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन बिचे माया पाया
0: हरि आप मुल कह मुल न पाया जाए
1: मुल न पाया जाए किसे बिटो रहे लोक बिल लाए
0: ऐसा सतगुरु जी मिले तो सुन सर सो पिए बिचो आप जाए
1: जिंदा ज्यो तिस मिल रहे हर वसे मन
0: हरि आप मौलक है भागत ना के नानका जन हर पल्लै पाए
1: हर रास मेरी मन बनजारा हर रास मेरी मन बनजारा सतगुर ते रास जानी
0: हर हर नित जपियो जियो लाख कटियो दिहाड़ी
1: एओ तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा
0: हर नानक हर रास मेरी मन हुआ बनजारा
1: ए रसना तू अंदरस राज रही तेरी प्यास न जाए
0: प्यास न जाए होरत के ते चर हर रस पल्लै न पाए
1: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बौड़ कृष्णा लागे आए
0: बरस कर्मी पाई है सतगुर मिले जिसे आए
1: कहे नानक होर अंदर सब विसरे जा हर बसे मन आए
0: श्री मेरे यार तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया
1: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया
0: आपे माता पे पिता जन जियो पाए जग दिखाया
1: गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया
0: श्रेष्ठ का मूल रचा जोत राखी ता तू जग में आया
1: मन जाओ पिया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया
0: हर गाओ मंगल सखी शोक दुख ना व्यापे
1: गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिन जापे
0: बाणी को शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो
1: कहे नानक प्रभाप मिलिया करन कारण जोगो
0: श्री राम मेरे जग माए कह क्या तुद कर्म कमाया
1: की कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
0: तेरा रचन रचिया स्वर मन वसाया
1: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया
0: नानक शरीर प्रवान हुआ जन सतगुरु से चित लाया
1: ए नेत्रो मेरियो हर तुम में ज्योतरी हर बिन अवर न देखो
0: हर बिन अवर देखो कोई नदरी हर निहाले
1: एओ भी संसार तुम देख दे हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया
0: बुझिया जावे खार है खार बिन अवर न कोई
1: कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिए देव दृश होई
0: मेरे साचा सुनने नु पठाए
1: साचे सुनने नु पठाए शरीर लाए सुनो ਸਤ ਬਾਣੀ
0: ਮਾਖਨ ਹਰਿਆਉ ਅਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ
1: ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ
1: ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ
0: ਵਾਜਾ ਪਵਨੋ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ
1: ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ
0: ਨਾਵ ਨਾਵ ਨੇ ਤਿਹਦਾਂਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ
1: ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ
0: ਸੋਇਲਾ ਸਾਚਾ ਕਰ ਗਾਵੋ
1: ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਇਲਾ ਕਰ ਸਾਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ
0: ਧਿਆਵੇ ਜਦ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਬੁਝਾਵੇ।

जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लेकना हुक्म करे विनाश इकना भाणे कड़ दे।

करती जय कोंकार सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जग मीत, जिस होए किरपाल सोए बिद बुझै, ताकि निर्मल रीत रहाउ। मात पिता बंता सुत बंध पष्ट में तेर पाही, पूर्व जन्म कै मिलै संजोगी, अंतह कौन सहाय। मुकत ला माल कनक लाल हीरा, मनोरंजन की माया, हा हा बकरत बिहा नी औद, ता मैं संतोख न पाया। हस्त रत असु पवन तेज तणी, भूमन चतरंगा, सांगण चाल्यो इन मैं कछुए, उड़ सदायो नांगा। हर के संत प्री प्रीतम प्रभु कै, ताके हर हर गाई है। नानक इहां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कै पाई है। जय श्री महला पंजवा, कर तीजा तीजा दुपदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। देह संदेश रो कहियो प्रिय कहियो, बिसम पई मैं बोब दिख सुनते, कहो सुहागण सही रहाव। को कह तो सा बाहर मा बाहर, को कह तो सा मैयो, बरण दिस चिहन लखिए, सुहागण साध बुझइयो। सरु निवासी कटकड़ वासी, लेप नहीं अल पइयो, नानक कहत सुनोरे लोगा, संत रसन को बसहियो। जय श्री महला पंजवा। धीरो सुन धीरो प्रभु को रहाओ, जी प्राण मन तन सवे अर्पो, नीरो पेख प्रभु को नीरो, बेशुमार बेअंत वरदाता, मने गहीरो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जब प्रभु को, गुरु प्रसाद नानक मन वसया, दुख ना कबहू झूरो, बुझ प्रभु स्यो प्रभु को। जय श्री महला पंजवा। लोड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कड़ कड़ तिसे बसेरा रहा। सुख राधन दुख राधन, बिसरण काऊ बेरा, नाम जबद कोट सुख जारा, बिनसे परम अंधेरा। थान थनंतर सभनी जाए, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहरण होई है फेरा। जय श्री महला पंजवा। कर चौथा दुपदे ओंकार सतगुरु प्रसाद। अमै सुख पायो गुरे आगे, तजी सियाण वचंत विसारी, अंग छुड्यो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोह व्यापे हो, तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टैल हर लायो, जो तो जम छोडी मोरी लाग, तरयो सागर पावक को, जो संत पिटे बड़ भाग। जय नानक सर्व सुख पाए, मोर हर चरणी च लागे। जय श्री महला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान धरा, दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभु जो मयात पै करा रहा। लकाल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमै डरा, आयो दुख हरण शरण करना पत, गहयो चरण आसरा। नाव रूप पायो सत्संग, भवन दुपार पराया, प्यो पियो गत थियुग परमा, कहो नानक जर जरा। जय श्री महला पंजवा। जा गोबिंद को पाए गोबिंद सहाई, सुख सहाय आनंद सगल सो, वाको ब्याध न काई रहा, दिस सब संग रह अलेपा, न्या व्यापे उन माए। एक रंग तत् के बेत, सतगुरु ते बुद्ध पाई, दया मया कृपा ठाकुर के, सही संत सभाई, तिनक संग नानक मिस्तरी है, जिन रस रस हर गुण गाय। जय श्री महला पंजवा। जो गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन मह प्राणी, अंधियारे मैं दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम, चरण कमल अनूप। अनक बार करो ते बंधन, मन चराओ धूप, हाल पर तुमरे प्रभु द्वार, दृढ़ कर गही तुमरी लूक। काढ़ ले नानक अपने को, संसार पावक ते कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर सुन दे वै जोरे, चरण कहो बको सब रसना, दीजे प्रूण प्राण को रहा, मंतन निर्मल करत के आरो, हर सिंचे सुदा संजोर, या रसमय मगन होत कृपा ते, मह बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितो तुमरी और, अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभु नानक बंधन छोर। जय श्री महला पंजवा।
चातुर्क चितवत वर्ष तुम कृपा सिंध करुणा प्रवतारो हर प्रवीण भगत को निरहाव अनुग्रूप सकवी ने चात अनंत पूर्ण पेख तेख दे आनु पावन चित तमीना बिंजल मरणा ते हम नाथ नाथ शरणी अपनी कृपा करें चरण कमल नानक आराध्य तिस्वनक जय श्री महला पंजवा मंत्रन बसरे मेरे प्राण कर कृपा साधु संपिट पूर्ण पुरुख सुजान रहाव प्रेम ठगौरी जिनको पाए तिन रस पियो भारी तिन की कीमत कहता की कीमत कह न जाए कुदरत कौन हमारी लाए ले लड़दास जने अपने उदरे उदर नहारे प्राप सिमर सिमर सिमर सुख पाए ओ नानक शरण दुआरे जय श्री महला पंजवा आए अणक जन्म भ्रम तरणी उदर देह अंत कुबत लाओ अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना नाहे न निर्मल करनी सात संग

अहनसु सहजसु पाये दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदी नूर अरस हो करसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम।

इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाके बस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई मेरे जीड़े

जाक वस काम तेना सो ऐसा हर त्याई मेरे जीड़े ता सर्ब सुख पाव हे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ते आईया हर पुरख निरंजना रहाउ जह हर सिमरन पया तह उपा जगत कीने वड भागी हर जपना

रहाओ। जय हर सिमरन बया तयो पाद गत किने, वड पागी हर जपना। जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर पव जल तरना। वाह।

शंख नाभ संघ धाव गम गम शंख लो शंख सिर पार हुई अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण वाण अखरा सिर संजोग बखान जेने लिखे तिसन नाहे जे फरमाए तो ते पाहे जीता गीता ते ता नाओ बिरनावे नाही को थाओ कुदरत कौन कहा विचार बार या ना जावा एक बार जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलाम तन निरंकार भरी है हाथ पैर तन दे पानी तोते उतर सोखे हे मुतपलीति कपड़ होए दे साबुण लइए ओहो धोए भरी है मत पापा कै संग तो पहनावे कै रंग पुनी पापी आखण आए कर कर कर ना लिख लै जाहू आपी।

कर जाहे गुरमुख नाम सलाही होमे लिवरी पाहे रहाओ सुन सुन कंडन कंडिये लिख पढ़ पुजे पात स्नान सगली होमे रोग विकारो बेप्रवाह तोलवा गुरमत की मत सार लक्ष्याण बजे करी लक्ष्यो प्रीत मलाप बिन संगत साधना तापिया बिन नाम है दुख संताप हर जब जीरे छुटिए गुरमुख ची नए आप तन मन गुर पै बेचिया मन दिया सर नाल त्रिपवन खोट ढोलिया गुरमुख निहाल सतगुर मिल मिलाया नानक सुप्रवनासी राग महला पहला मारने की चिंता नहीं जीवन के नियास तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेख सासग्रास अंतर गुरमुख तू बस है ज्यो पावे त्यों निर्जास जीरे राम जात मन मान अंतर लागे जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहा अंतर की गल जानिए गुरु मिलिए शंख उतार मोया जित कर जाइए ते जीव ज्या मन मारा अनहद शब्द सुहावड़े पाइए गुरु विचार अनहद पाणी पाइए ते होमे बनास सतगुरु सेवे अपनाओ सतगुरु बाणे तास खड़ दुर्गे पनाइए मुखा नाम निवास जय देखां ते रब रहे शिव साथी का मेल त्रिगुण बंधी देहुरी जो आया जग सो खेल बजोगी दुख बिछड़े मन मुखला है ना मेल मन बरागी कर बसे सच पैरा तो हुए ज्ञान महारस भोग वे बहुत भुख ना हुए नानक मन मार मेलो पी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला इहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लुभान शब्द न भीजे साकता दुरमत आवण जान साधु सतगुरु जे मिले ता पाइए गुणी निदान मन रे होमे छोड़ गुमान हर गुरु सर्व सेव तो पाव है दर गय मान राव राम नाम जप दिन सरात गुरमुखा तन जान सब सुख रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नितैना प्रभ सेविया सतगुरु दिया नाम कुकुर कुड़ कमाई है गुनिंदा पचे पचान भरमे पूला दुखण जम मार करे खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुपार इथे तंद पटाई है सत लिख प्रवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी प्रधान नानक नाम ना बीसरे कर्म सचे निशान सी राग महला पहला एक दिल प्यारा बीसरे रोग बड़ा मन माए क्यों दर गए पत पाई जहर ना बसे मन माए गुर मिले सुख पाई अगन मरे गुण माए मारे एन सर गुण सार जिन खिन पल नाम ना बीसरे ते जन बेले संसार ज्योति ज्योत मिलाई सोती सो संजोग है सौ में गात गए ना ही सस सो गुरमुख जे सर मन बसे तस मेले गुर संजोग काया काम जे करी भोगे भुगना ते सुने ना की जेई गोदी से चलनहार गुरमुख रे सुहागणी सो प्रभ से जपतार चारे अगन निवार मर चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रकाशिया अमृत भरिया गाए नानक सतगुरु मीत कार सच पावे दरगाह जाए श्री राग महला पहला हर हर जब प्यारिया गुरु तलियार बोल मन सर कसवटी लाइए तुलिए पूरे तोल कीमत कने ना पाइए मान कमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे सत संगत सतगुर पाइए ने सब सलाहे राव सच बखत रास है पाइए गुर प्रगा ज्यो अगन मरे जल पाए त्यों त्रसा दस अंदास जम जमदार न लगी हो भौ जल तरे त्रास गुरमुख कूड़ ना पावी सच रते सच पाए साख सच न पावी कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेल है सचे सच समाए मन में मानक लाल नाम रत्न पदार्थ हीर सच बखत धन नाम है गड़ गड़ गैर गंभीर नान गुरु पाइए दया करे हर ही श्री राग महला पहला भरमे पाए ना बिज बिज भगत संत देश अंतर मैल न उतरे त्रिग जीवन त्रिगवेश होर के तय भगत न हो मई मन सतगुर के उपदेश मन रे गुरमुख गनवार गुर का कह मन वस हो मैं तृष्णा मार हो मन मानक निर्मोल है राम नाम पत पाए मेरे सत्संग दर पाई है गुरमुख हाले बुलाए आप गया सुख पाया मेरे सलल है सल समाज जिन हर हर नाम न चेते हो सो अगण आवे जाए जे सतगुर पुरखा भेटियो सो भौजल पचे पचा यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदल जाए जिना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मेरे भौजल लंघी दर गए पत प्रवान नानक ते मुख उजले तुन उपजाए शब्द निशान सी राग महला पहला बन करो बन जा रियो बखर लियो समाल तैसी बस बसाही जैसी ने वह ना लगे छाओ सुजान है लैसी बस समाल भाई राम कहो चित लाए हर जस बखर लै चलो सो दिखे पत्याए रहा जिना रासना सच है क्यों तिना सुख होए खोटे बनज बनजिए मन तन खोटा होए भाई पाते मृग ज्यो दुखन त्रोए खोटे पोते ना पावे तिना हर गुरदास ना होए खोटे जात ना पाते खोटन सिर कोए खोटे खोट कमा बनाए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर के सब सलाह राम नाम रंग रत्या भार ना भरम ते ना हर जबला अगला निरपो हर मन महा श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो बनियार फुलड़ा ना ठीड़े दिन चार पबन केरे पत ज्यो ढल धोल।
ਮਨਹਾਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਚੋਬਨ ਲੋਹਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਭੈ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਰਾਵ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ ਹੰਬੀ ਵੱਜਾਂ ਟੁੰਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤਨ ਪਈਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈਏ ਜਾਣ ਬਰਾਤੀ ਸਨ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਾਂਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਾਣ ਸੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹੋਰ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਰੜ ਆਪੇ ਸਿਰ ਪਤਾਰ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨਿਤ ਰਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੇਖੋ ਮਾਰਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਵੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੇ ਤੂੰ ਸਰਬਰ ਤੂੰ ਹਸ ਕੌਲ ਤੂੰ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਖ ਬਗਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੀ ਜਾ ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸੱਲਾ ਪਾਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਮਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਤੇ ਜਮਾ ਲਿਆ ਭਾਵ ਸਪਾਦਨੇ ਰੇ ਬਾਣੀ ਕਾਹੇ ਗਰਭ ਸਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ਪਿਤ ਸੁਤੋ ਸਗਲ ਕਲੱਤਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾਂਤ ਸਖਾਇਆ ਰਾਵ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਤਾ ਜਾਤ ਮੋਹਿਤ ਆਈ ਜਬ ਤਾ ਸਾਂਝ ਹੋਏ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲ ਵਿਖਸੇ ਮਾਧਾ ਸਮਰਾਈ ਵੀ ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ ਰਹੇ ਤੀਨ ਖੁੜਾ

दास मेहर करे जिस मेहरबान ता कार दिया वैरास। बहुत बहुत गाणी ऊंच ऊंचा था बाला च नवा रखी कह नसकाओ नानक ब्रह्म का सदी भवन श्री राग मल्ला पंजाब नाम तिहाई सो सुखी तस मुखुज लोहे पूरे गुरुदेव।

कर सेवक पूरा सतगुरु बन जा रहे मित्रा सब जी सब चली रहन विहादी हर सेवक खिन खिन ढिल न ढिल मूल ना करो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सदमान हो रलिया जन्म दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो मित जित मिल हर भगत सुखांदी को नानक प्राणी चौथा पैरा सह सबलो रहन भगतां दी चिराग महला पंजवा पहला पैरा रहन कै बन जा रहा मित्रा थर पैता उतरै माहे दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र

दुर्योधन देवाया खांडवर पांडव सब बड़ खांडवर पांडव शोभा होई देवदान नर लहर लाया होर मानमुख दास जे रख दिखा ले सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर पा मेरे बाबला देवदान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला मेरे फिर मिल धन वेल बधंदी हा जुगो जुगै जुगो जुग जुगै जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिनी गुरमुख नाम त्याया हर पुरख न कभी बिनसा जावे नित देवा चढ़ सवाया नानक संत संत हर एको हो हर जप हर हर नाम सुहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल धन वेल बधंदी श्री राग महला पंजवा छंत ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारा जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारा जी मित्रा निभे तेरे नाले संग सहाई नाम त्याई बिथा कोई न जाए मन चिंदे सही फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल मूर है बनवारी घट घट रेंद निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रमजाले मन प्यारा जी मित्रा हर मिन झूठ पसारे मन प्यारा जियो मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल कर बोहित करते सासा असैसा दुख न व्यापै गुरपुरा भेट बड़भागी आठ पैर प्रभ जापै आजुगा दिशेवक स्वामी भगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारा जियो मित्रा हर लदे के पसवली मन प्यारा जियो मित्रा हर दर ने चल मल्ली हर दर सेवे लख पेवे ने चला सन पाया तै जन्म न मरण आवन जा

जाते पित सुनते सब तन कि लिखती कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिनी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया नाम सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गया लीने हर जसो दीने जो न तावै न मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटते हरे भेटते भेटते हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय कथ स्वामी सदगया जाय नानक मारिया श्री राग महला चौथा बणजारा एक ओंकार सतगुर सत नाम कर गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो हर जी समय प्रतपालदा घट घट मैया सोए सो हर सदा त्याई है जिस बिना बिना कोई जियो जो मोहे माया चित लाए दे सुच से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिन अवना कोए हर बिन गुर सरनाई पाईया बन जा रहा मित्रा बड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना बिन पाईया हर किना न पाया नाओ विच हम मैं कर्म कमाव दे विच जो पे बेसुआ पूत ने नाओ पिता जाता हो यह गुर तुठा करे पसाओ बड़ पागी गुर पाया हर एनिस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन

0: भी रंग राता और दुनी सब भरम पुनानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की हरिया कह कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: रे नर गर्भ कुंडल जब आशत उदर ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एहन स एक गहन सो नागा ते दिन संभल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ जो छोड़ मित्र मंडल आया तो नर हर मनो वसारिया फिर पछतावेगा मुड़िया तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जम पर जाएगा जन विचरे अनरादा रहाउ बार विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे ब्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सकृत माता राम नाम आराध्या उछलिया काम काल मत डागी तो आन सख्त गल गल बाध्या तहन तेज पर त्रै मुख जोहे सर अपसर ना पछाणिया उनमत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपद देखियो मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मोह जन्म बिगोया पुंडर केस कसम ते तोले सब तत पर ताल की बाणी लोचन समसरै बुद्ध बल नाठी ता काम पाव समधाने ताते बिखे पही मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मित्र मंडल तो पाछे पछताना निकुटी दे देख तुने उपजे मान किरत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका ती जुड़िया मन पंखी कर अंगन ना सखाई बेणी कहे सुनो रे भक्तो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा कनक कट जल तरंग जैसा जो पै हम ना पाप करंता एह अनंता पतत पावन नाम कैसे होता रहा तुम जो नायक आशो अंतर जामी प्रभ ते जन जा नीजे जन ते स्वामी शरीर राधे मोको विचार देहो रविदास सम दल समझावे को राग माज चौप दे घर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत जोनी सह पंगुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया बड़भागी हर नाम ते आया गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई को बेला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पले मेरे प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपुरे हर नाम दड़ाया हर नाम हर निश्चल हर तन पले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मिलावे मेरे प्राण जवाया हूँ रह न सका विन देखे प्रीतमा मैं नीर बहे बह चले जियो सतगुर मित्र मेरे बाल सखाई हूँ रह न सका विन देखे मेरी माई हर जियो कृपा करो गुर मेलो जन नानक हर तन पले जियो माज महला चौथा मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हूँ हर बिन दूजा वरना जाना कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी मैं हर पर प्यारा दसे जियो हूँ मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सतसंगत खोज साई बिसंगत हर पर बसे जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करो प्रित पाला मेरे मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल बिगसे जियो मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे मेरे मन तन बेदन गुर विरो लगावे हर हर दया करो गुर मेलो जन नानक गुर मिल रहसे जियो आज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग पव जल दूतर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करे हाँ मेर प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम पाई मैं दसे हर नर हरिया जियो मेरी वेदन हर गुर पूरा जाने हूँ रह ना सका बिन नाम बखाने मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम धरिया जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर सरनाए, हर हर नाम बूंद मुख पाए। हर जल निध हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे पाई। मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरे सरदा पूर जग जीवन दाते। मिल हर दर्शन मन पीजे जियो, मिल सत्संग भूली हर बाणी। हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन पावे। मेरे सतगुर अमृत पीजे जियो, बड़भागी हर संगत पावे। भागहीन भ्रम चूटा खावे, बिन भागा सतसंग न लभे। बिन संगत मैल परिजे जियो, मैं आए मिलो जग जग जीवन प्यारे। हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया। जन नानक नाम मन पीजे जियो। माज महला चौथा, हर गुण ज्ञान हर रस हर पाया। मन हर रंग राता हर रस पियाया, हर हर नाम मुख हर हर बोली। मन हर रस टुल टुल पौधा जियो, आवो संत मैं गल मिलाइए मिलाइए। मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा। जो गुरबाणी मुख चौदा जियो, बड़भागी हर संत मिलाया। गुरपूरे हर रस मुख च पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया। मन मुख गर्भ जोनी नित पौधा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी। मल होमे बिखिया सब नवारी, नानक हट पटन बिच काया। हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हूँ गुण गोविंद हर नाम ते आई। मिल संगत मन नाम बसाई, हर प्रभ अगमय गोचर स्वामी। मिल सतगुर हर रस कीचे जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता। जाय पुछा जन हर की बाता, पाप मलोबा मल मल तोबा। मिल हर जन हर रस पीचे जियो, सतगुर दाते नाम दड़ाया। बड़ भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली। गुर पूरे अमृत लीचे जियो, हर सत अंगत सतपुरख मिलाइए। मिल सत संगत हर नाम ते आइए, नानक हर कथा सुनी मुख बोली। गुरमत हर नाम परिचे जियो। माज महला चौथा, आवो भैने तुस मिलो प्यारियां। जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हूँ बारियां। मिल सतसंगत लद्दा हर सज्जन, हूँ सतगुर बिठो कमाइया जियो। जय जय देखा तै तै स्वामी, तू कट कट रविया अंतर जामी। गुरपुरे हर नाल दिखा लिया, हूँ सतगुर बिठो सद वारिया जियो। एको पवन माटी सब एका, सब एका जोत सबाइया। सब एका जोत वरते भिन भिन, न रली किसे धीर लाइया। गुर प्रसादी एक नदरी आया, हूँ सतगुर बिठो बताया जियो। जन नानक बोले अमृत बाणी, गुरसिखा के मन प्यारी पाणी। उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पर पकारिया जियो। सत चौदे महले चौथे के, माज महला पांजवा चौप दे घर पहला। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरिके न्याई। त्रिखा न उतरे शांत नावे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हूँ कोली जियो कोल कमाई, गुर संत दर्शन संत प्यारे जियो। राव तेर मुख सहावा जियो, सहज तुन बाणी। चिर हुआ देखे सारंग पाणी, तन सुदेश जहां तू बसिया। मेरे सज्जन मीत मरारे जियो, हूँ कोली हूँ कोल कमाई। गुर सज्जन मीत मरारे जियो। राम एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रैत उध भगवंता। मोहि रहण ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हूँ कोली जियो कोल कमाई, ते सच्चे गुर दरबारे जियो। राम भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ विनासी कर में पाया। सेव करी पल चसन बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों कोली जियो कोल कमाए, जन नानक दास तुम्हारे जियो। राम राग माज महला पांजवा, सार उत सुभावी जित उद समाले। सो कम सहेला जो तेरे तेरी काले, सो रिदा सहेला जित रिधे तू बूठा। सबना के दतारा जियो, तू साझा सह साहेब बाप हमारा नौ निद तेरे खुट भंडारा जिस तू दहे सो तृप्त कहवे सोई भक्त तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू ही बूठा सबे सांझी बाल सदायन को किसे न दिसह वारा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहारे सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सहेला शब्द आनंद करे सदकेला सहज गुफा में ताड़ी लाई आसन उच सवारिया जियो फिर कर अपने ग्रह में आया जो लड़ींदा सोई पाया तृप्त काय रिहा है संतो गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा आपे तख्त बहे सच न्याय सब चुकी कूक पकारिया जियो जेहा डिठा मैं तेहू कहया तिस रस आया जिन भेद लिया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानके कपसारिया जियो माज महला पंजवान जित कर फिर सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया आनंद बनोद तिते कर सोहे जो तन कंत सिगारी जियो सागुण बंती साबड पागण पुत्र पुत्र बंती सील बंत सुहागण रूप बंत सा सुगड़ बिचकण जो तन कंत प्यारी जियो अचार बंत साई परदाने सब सिंगार बने तिस ज्ञाने साकल वंती सास पराई जो फिर के अंग सबारी जियो मेहमा तिसकी कह न जाए जो फिर मेल लई अंग लाए थिर सुहाग वर अगमे गोचर जन नानक प्रेम सधारी जियो माज महला पांजवा खोजत खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अबगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे जियो खट शास्त्र विचरित मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीर्थ तीर्थ स्नाना निबली कर्म आसन च रासी इनमें शांत ना वह जियो अनक बरख किए जप तापा कबन गबन गिया धरती परमाता एक खिन हिरदे शांत ना आवे जोगी बहुत बहुत उठता वह जियो कर कृपा मोहि साध पे मिलाया मन तन शीतल तीर्ज पाया प्रभ मनासी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म परंपर देवा अगमे गोचर अलख पेवा दीन दयाल गपाल गविंदा हर त्याबो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइये होरत कित न पाती जियो निराहारी किसब निर्वैरा कोट जन्ना जाके पूजे पैरा गुरमुख हिरदे जाके हर हर सोई भगत काती जियो मोग दर्शन बेअंत पारा बड समरथ सदा दतारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक बिरली जाती जियो माज महला पंजवा केहा कहना दिता लेना गरीबा नाथा तेरा माणा सब कुछ तू ही मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो भाणे उजड़ भाणे राहा भाणे हर गुण गुरमुख गवाहा भाणे परम पवे बजूनी सब कुछ तिसे रजाई जियो ना को मूर्ख ना को सियाणा बरते सब कुछ तेरा भाणा अगमे गोचर बेअंत था तेरी कीमत कह न जाई जियो खाक संतन की दिहो प्यारे आए प्यार तेरे द्वारे दर्शन पीकत मन कहवे नानक मिलन सपाई जियो माज महला पंजवा दुख तदे जा बिसर जावे भुख ब्यापे भावे दतावे सिमरत नाम सदा सहेला जिस देवे दीन दयाला जियो सतगुर मेरा बड़ समरथा जी संभाली ता सब दुख लथा चिंता रोग गई हूँ पीड़ा आप करे पित पाला जियो बारक बंगी हूँ सब कुछ मंगा दें दे तोट नाही प्रभरंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गपाला जियो हूँ बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हिरदे नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो माज महला पंजवा लाल कपाल दयाल रंगीले गहर गवीर बेअंत गोविंदे ऊंचा सा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हूँ जीवा जियो दुख भंजन निदान अमूले निरपौ निर्वैर था तोले अकाल मूर्त जोनी संभो मन सिमरत ठंडा थी वाजियो सदा संगी हर रंग गपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृपताइन गुरमुखे अमृत पी वाजियो दुख सुख प्यारे तुद ते आए इस मत गुरु ते पाए नानक की तर तू ही ठाकर हर रंग पार परी वाजियो माज महला पांजवान तन सुवेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेतर पेखत तरिया तन मूर्त तसे चसे पल कड़िया तन सो ओए संजोगा जियो उदम करत मन निर्मल होआ हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कति तै आप बखाणी गुर कहया सब एको एको अवर न कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पैन नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमासे नाव नानक कीने भोगा जियो माज महला पंजवां सगल संतन पह बस्त एक मांगू करो बिनंती नाम ते आगो वार वार जाई लख वरिया देव संतन की तूरा जियो तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समर्थ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरे पवन पनीता आत्म गढ़ बिखम तिना ही जीता तुम दाते तुम पुरख विधाते तो जे वडे अवर न सूरा जियो रेन संतन की मेरे रे मुख लागे गुरु दुरमत बिनसे कुबद पागे सच कर वैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो माज महला पांजवान बिसरनाए बड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरहन ज्यों तुद ते आए यो दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाए सब कुछ दिया भलिया जाए आनंद बनोद चोज तमासे तुद पावे सो होना जियो जसदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना सहज सकाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो साबद दीजे जित बिसरे नाही सा मत दीजे जित उद्धते आए सास सास तेरे गुण गावा उठ नानक गुर चरना जियो माज महला पांजवां सिरत सलाहिन तेरा हुक्म रजाए सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाए सोई जप तो जो प्रभ जियो पावे पाणे पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करे प्रतपाल प्रतपाला संत खेले तुम संग गपाला अपने संतन तुझ खरे प्यारे तू संतन के प्राण हाँ जियो उन संतन के मेरा मन करबाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त कान्हा जियो माज महल

सदा सरे भी एक मन त्याई गुरमुख सज समावणिया हो वारी ज्यो वारी जग जीवन मन बसावणिया हर जग जीवन निरपौदाता गुरमत सहज समावणिया रहाओ कर मैं तरती तौल पताला कर ही मैं प्रीतम सदा है वाला सदा आनंद रहे सुखदाता गुरमत सहज समावणिया काया अंदर हो मैं मेरा जमन मरन ना चूके फेरा गुरमुख होवे सो हो मैं मारे सचो सच त्या बणिया काया अंदर पाप पुन दोए पाई दोही मिलक

को कौन काज कर कृपा रखे अबलाज। क्या मनुख कहो क्या जोरे झूठा माया का सब सोरे करुण क्राउन हर स्वामी सगल ढाके अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचाए गुरु प्रसाद गुरु उपदेश मन मिल जा को राम नाम लीला की को नाम सो तन उड़पागी कौड़ी गुआर महला पंजा सुन हर कथा उतारी मैल महापुनीत भय सुख सैल बड़े भाग पाया सत्संग पार पुन सो लागा रंग हर हर नाम जपत जन तारे हो अगन सागर गुरु पार उतारे रहाओ कर कृपा कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के कलयुग भय श्रमदान पेके मन माया ढूंढन कहा को जा काहे को जाए प्रभु अपने जब भय दयाले पूर्ण हुई सेवकाले बंधन काढ़ के अपने दास सिमर सिमर सिमर सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर सब जाए गुरु पूरे सब रम चुकाया हर समृत नाम सुख पाया गौड़ी गुआर महला पंजा अगले मुहे सपाछे परे जो बुरे सो बंद खरे चह तैंधे धंधे मैं ओ लपटाए तुम ते दुगन दड़ी माए ओ वेला कुछ चितनाए बिन जाए तह लपटावे रहाओ आसा बंदी मूर्ख दे काम क्रोध लपटे संदे सिर उपल ठांडो धर्म राय मिठी कर कर विखे खाए हों बंदो हो साधो बैर तुम हमरी भूम कौन काले पैर हों पंडित जो त्रसिया न करण हर न बुझे बिघाना अपनी गत में ते जा पे जाने क्या को आखे क्या को कह क्या वो खन जित लावे तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सब को ते सब की तेरे करने अंत ने किस बारा वार दास अपनी को दीजे दाने कवन विसरे नानक नाम गौड़ी कुआर महला पंजा अनंग जितने हो छुटारा बहु सियाण अगल फारा हर की सेवा निर्मल है प्रभु की दरगह शोभा से मन मेरे को हर नाम कावला तुझन लागे ताता झोला रहाओ ज्यों बोत बैसा गुरमाए अंधकार दीपक दीपाए अग्न सिद्ध काला दुख नाम जात मन हो असोक उतर जा त्रिमन की प्यास पूर्ण हो सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम अगर सुजन पावे कर कृपा जाप दिवावे हर हर नाम सा जन कै हृदय वस जा के हृदय वस दुख दरते नानक नसे गौड़ी गुआर महला पंजवा बहुत दर्भ कर मन अगन अनक्रूप देख नह पतियन पुत्र कुलित्र जो जान मेरी ओ बिन शिव पस में ढेरी बिन हर भज देखो बिलाते त्रिग तन माया संग्राते रहा ज्यों बेगारी कै सिर दीजे दाम ओ खसमे कै ग्रह सहाम जो सुपने हो बैस राजा नेत्र प्रसारद निरर्थ काजा जो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राख उड़ जाए उस खेत कारण खरा खा कड़े तिसके पाले कछु न पड़े जिसका राज तिसके सुपना दिन माया दिन दिन लाए तिसना आव नाह आव करे रास नानक प्रभु अगे अरदास गौड़ी गुआर महला पंजवा बहुरंग माया बहुरंग भेखी कलंकाक दिल सियाण लेखी मेहर मलूक होए देख्या खान ताते नाय मंत्र बता ने सो सुख मोको संत बताव तिसना बुझे मंत्र बताव रहाओ अस पावन सवारी चूआ चंदन से सुंदर नहारी नाट नाट गारे गाया तम मन संतोख न पाया तख्त स्वा मंडत दूड़ी चै सगन में सुंदर बागीचै खेड़ बिरत राजन की लीला मन सुहेला प्रपंच हीला कर कृपा संतन सज गया सर्व सुख आनंद लहया सा संगा कीर्तन गाये कौन नानक वड भागी पाए जाके हृदय हर तन सोए जाके हर तन सोई सोला प्रभु कृपा दे सास मल रहा दूजा गौड़ी गुआर रि महला पंजवा प्राणी जाने तन मेरा बहुर बहुर आहू लपटेरा पुत्र कलत्र ग्रिस्त का फासा हुन भाई राम को दासा कौन सो बिद जित राम गुण गाए कौन सो मित जित डरे तरे हिमाए रहाओ जो भलाई सो बुरा जाने साच कहे ते बिके समाने जाने नाय जीत हरारे हिले वसाक संसार जो हलाल सो पीवे बौरा अमृत नाम जानी कर कौरा साध के संग साध संग ना कह नाही नेर लख चौरासी भुमदा फेर कै जाल फाए पंकीरा सर भूकरे बोरंगी कहो नानक दिस भय कृपाले गुरु पूरे ताके काटे जाल गौड़ी गुआर महला पंजा तौ कृपा ते मार्ग पाए कि प्रभु कृपा ते नाम ते आए प्रभु कृपा ते बंधन छुटे तौ कृपा ते हूं मैं छुटे तौ कृपा ते हूं मैं टूटे तुम लाभ तो लागे सैब तुम ते कुछ न हुए देव रहा तुद भावेता गावा बाणी तुद भावेता सज वखाणी तुद भावेता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभु तेरी दया जो तुद पावे सो निर्मल करमा जो तुद पावे सो सच धर्मा श्रमदान गुण तुम ही पास तू साहिब सिव करदास मंत्र निर्मल हो या रंग सर्व सुखा पाव सत्संग नाम तेरे रहे मन राता है कल्याण नान कर जाता गौड़ी गुआरी महला पंजान सद से सब चाह जिते तेरे चाह तै चाके निमग न तेरी लाते हर का चाके साथ चाक तो हेरा समाध

चरण बखार करी सेवा सकारी सेज सेवा जियो पूजा अर्चा बंद देवा जियो दासन दास नाम चपले वन जियो जिबिनो ठाकुर पै कही जी छपुनी बिर मंथन हरिया जियो दर्शन पे साधु पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जब तरिया।